अपने योग बल नाल कई कई तरह दे डरावने रूप बना के गुरु नानक नू डरावना चाहिया है। एक पासे भयानक शेर बन के गरजे, दूजे पासे अजगर सप बन के मुंह विचों अग दी वर्खा कर रहे हन। कोई उड़ रहा है, कोई चुड़ैल दा रूप धारण कीती बैठा है, कोई पूतना बन के डरा रहा है। मर्दाने आख्या गरीब निवाज हुण की करांगे, धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे ए तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ए साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि नाम दे अगे इना दियां रिद्धियां सिद्धियां कोई कम नहीं कर सकदियां। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। भाई साहब लिखते हैं कि इकना नाग होए पौन छोड़िया, इकना बरखा अगन वसाई, तारे तोड़े भंगर नाथ, एक चढ़ मिर्गानी जल तर जाई, सिद्धा अगन ना बुझे बुझाई। जदों कुछ ना बिगाड़ सके ता ए योगी आके गुरु नानक नूं कहन लगे भाई असी इतना चमत्कार विखाया, कुछ तुम्हें विखा। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे सिद्ध बोलन सुन नानका, तोए जग नूं क्या करा मात दिखाई, कुछ विखा ले असानू भी, तू क्यों ढिल अवे लाई। बाबा बोले नाथ जी असा वेखने जोगी वस्त न काई, गुर संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राई, शिव रूपी करता पुरख चले नाही तरत चलाई, सिद्ध तंत्र मंत्र कर झड़ पे शब्द गुरु के कला छपाई, ददे दाता गुरु है कके कीमत किने न पाई, सो दीन नानक सतगुर शरणाई। बाबा बोले नाथ जी शब्द सुनो सच मुखो अलाही, बाजो सच्चे नाम दे होर करा मात, असा ते नाही बस्तर पैरो अगन के। बाबे ने आख्या सिद्धो बेशक कोई इतनी योग तपस्या कर लवे के अगन दे बस्तर पैर लवे, इतने तंत्र मंत्र दा जानू हो जावे, बर्फ हिमालय मंदर शाई हिमालय पर्वत ते अपना घर बना लवे, ते जदों उसनू भुख लगे लोहे दी रसोई करे, भाव रोटी दी थां ते लोहा चबाउन लग जावे, एडियां रिद्धियां सिद्धियां आ जान, करै रसोई सार दी सगली धरती नथ चलाई, सारी धरती नू नथ पा लवे, एवड करी विथार को सगली धरती हकी जाई, तोली धरत आकाश दोए पिछे शाबे टंक चढ़ाई, ऐडी करा मात दा मालिक बन जावे धरती ते आकाश नू तोल के दस देवे। उचारण करो श्री वाहिगुरु। ए बल रखा आप विच, फिर ए बल अपने विच भी होवे, चे जिदे सिर ते हाथ रखे ए बल उदे विच भी आ जावे, एडी वड्डी समर्था दा मालिक बेशक कोई बन जावे। ते हजूर कहंदे हन बिना नाम तो ए सत नाम बिन बादर शाही, एक बदलां दी छां है जेड़ी कदे एक थां ते टिकदी नहीं, जिदी कोई वैल्यू नहीं हुंदी। इसलिए हजूर ने कहा भाई ए कर्म धर्म पाखंड जो दीसै तिन जम जागाती लूटै, आख्या जे मनुच्छा जन्म सफल करना है ता निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमख सिमरत जित छूट है। ऐसे सच दे बचन जदों सिद्धा ने सुने मन नू हलूना वज्या, ता फिर ओई सिद्ध जेड़े बड़े क्रोधित हो रहे सन गुरु नानक सच्चे पातशाह

बिन बाजे कैसो नृतकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जिहवा कहां को बगता, बिन श्रवना कहां को सुनता।

साहिब गुरु नानक देव जी बचन कर रहे हैं। ध्यान देना बाणी पातशाह आखदे हैं।

तीर्थ गवन करे। खटकर्मा ते दुगुणे पूजा करता नाए, रंग न लगी पार ब्रह्मता सर पर नरके जाए।

नेता पर सतगुरां दे चरणा विच रहण वाला अज दो दिन दर्शन ना होए नेत्रा चो जल वहण लगदे। पर बाहर बैठे हां मन विच एक ख्याल उत्पन्न होया मना जे झूठ भी बोलना पवे सतगुरां दे दीदार करन वास्ते ते कोई अर्ज नहीं। अपने वास्ते झूठ ना नहीं बोलना दीदार वास्ते झूठ बोलना है। मन विच फुरना बन गया जे माया नहीं प्रसाद नहीं ते एक रेत दी पंड बन लेना रेत दी पंड बनी सिर ते ते दूरों आवाज देंदा जांदा कहिंदा राह छड़ दियो गुरु के लंगर वास्ते खंड ले जा रहे। रेत दी पंड सिर ते चुकी पहरेदार परे हट गए सुथर अंदर लंघ गए। जदों अंदर लंघ गया सतगुरु जिथे बैठे सन थोड़ी दूर ओ रेत वाली पंड रखी ते सुतरा पंड दी परिक्रमा करन लग पिया। बार बार पंड नूं नमस्कार करदा बार बार परिक्रमा करदा मत्था टेकदा। सेवादारा ने तकिया सतगुरु नूं बेनती की सतगुरु आ तकिया जे सुथरा आप सिंघासन ते बैठे हो ते पंड नूं मत्था टेक रहा है। साहब कहन लगे सुथरे अज की हो गई। सुथरा पब्बा मार के रो पिया कहन लगा पाछा अज इस पंड नूं मत्था ना टेका ते किनू टेका अज इहदी परिक्रमा ना करा ते किहदी करा। पाछा अज तेरे पहरेदारां ने पाबंदी ला दित्ती ते तू दीदार करन अंदर नहीं जा सकदा तेरे पास भेटा होवे ते अंदर जा सकदा। पाछा मैं कित्थों तन लिया कित्थों प्रसाद लियावां अज तेरे पहरेदारां नूं झूठ बोल के आया कि गुरु के लंगर वास्ते खंड ले जा रहे हां। पाछा रेत दी पंड है अज एदे सदका तेरे दीदार हो गए एदे सदका अज मैं अंदर आके तुहाडे चरणा विच सेवा कर सकदा। पाछा इहनू मत्था ना टेकां ते किहनू टेकां जिहदे सदका तेरे दीदार हो गए। गुरु कलगीधर पातशाह ने सुथरे नूं गलवक्कड़ी विच लै लिया प्यार कीता कुट के कहन लगे अच्छा जा सुथरिया तेरी ये भेटा भी प्रवान पावे तू रेत भी पंड लैके आया है जा अज तो बाद लंगर विच इसे रेत नाल भांडे मांजे जा। दीदार हो गए आओ भाई अज आप

जाएंगे। गुरु पूरे जी होवे दरगाह, साहेब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहेब का होवे प्रकाश। पंजां दे रूप विच कलगीधर पातशाह आप आ खड़ोवे, भर भर के नाम दे गुलाल रंग दियां पुचकारियां मारे अपने दर खड़े प्यारियां के। कलगीधर दे हत्थों जिन्हां दे तन ते मन दियां चोलियां रंगियां गईयां, ऐसा रंग संसार विच वेखण नहीं आया। गुरु कृपा करे ये शरीर बन जाए रंगण वाला भांडा, गुरु बख्शिश करे ते शरीर बन जाए काया, काया बन जाए रंगण वाला भांडा। इहदे विच नाम दा मजीठ रंग उबालिया जाए, काया दे बर्तन विच नाम दा मजीठ रंग उबालिया जाए, नाम दा मजीठ रंग इस भांडे दे अंदर पाया जाए। ते कलगीधर पातशाह फिर करे आप बख्शिश, उहदे थों किसे असीं देहधारी नूं ना मनीए, उहनूं हाजर नाजर प्रतख अपना गुरु मनीए, क्योंकि साहिब मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब मैं रहा सुन। गुरु खालसा पंथ ने सदा कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह अंग संग है। अपने सिख तो कदे भी नहीं जाता है, उन्हें हिरदे की पीड़ा सब सुनदा है, उन्हें अवस्था नूं सदा वेखदा है। एक पल भी अपने प्यारे तो कदे दूर नहीं जाता है, प्यारे नाल प्यार ही ऐसा है। पर दुर्भाग तो साड़ी वो नैन प्राप्त नहीं हुए जिदे नाल निकट वसदा प्यारा देखण विच आ गया, वो बयान अखड़ियां वो सुंदर नैन वो नैणा की सुंदर जोत नैणा दे हुंदिया भी प्राप्त नहीं हुई जिन्हां नाल कलगीधर दे हिरदे ते बैठे दे प्रतख दीदार हो जा। सरूप इष्ट बख्शिया सोझी दीती, दसां जामिया की आत्मक जोत गुरु ग्रंथ साहब की बख्शिश की, कह दिता है कि गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे। सबों कुछ बख्श दिता ते नाल सूझ भी बख्शी, इनू वेखण वाली एक अख भी है, पर यह जाचक बन के ढह के उहदे दर दे उत्ते मंग ते बन के कदे कलगीधर दे दरों यह मंग नहीं मंगी। पुत्र भी मंगे, संसार दे सुख भी मंगे, धन भी मंगिया, इज्जत आपरू भी मंगी, सबो कुछ मंगिया, पर कदे इस दर दे उत्ते आके यह मंग नहीं मंगी, हे जीवन वास पातशाह, हे कलगीधर सतगुरू, जिथे अपने महान मुबारक मुखार बिन तो उचार के ए गल आखी सी, प्रगट गुरां की दे गुरु ग्रंथ साहिब जीवन वास इक बख्शिश कर, ओ नेत्र भी बख्श ते जिस दे रूप विच तू बैठा प्रतख दिसवे। फिर इस महान सतगुरु की हजूरी विच कलगीधर साहिब सतगुरु पातशाह पंजां दे रूप विच आप प्रगट खरोता होवे, बन जाए ये काया दा भांडा रंगन, ते नजीर टिक जाए इस दे अंदर रंग,
ਤੇ ਲਿਲਾਰੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੋਲੀ ਇਸ ਮਜੀਠ ਰੰਗ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਰੰਗ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਨਾਲ ਚੋਲੀ ਰੰਗਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਚੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਆਪ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ।

तू बेअंत को बिरला जाने को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा, तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरी बहु रंगी सब तेरे निया, तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सभी, मुन इंद्र महाशिव जो करी, तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा,

ही चिट्टा हो गया पर अंदरू मैल है, यदि तन मैल नहीं गई। साबण नाल धोंदा फिरदा है, कर्मकांडा नाल इस चोले नूं धोना चाहुंदा है। ये धोना चाहुंदा है कर्मकांडा नाल, ते हजूर कहंदे जे तू इस चोले नूं इस तरह धोना चाहवें

हसूर कहने ने गंगा अज समा मिले साध संगत दी सेवा कर ली हसूर कहने ने गंगा असी भी अज अपने तन का चोला रंग ली मात गंगा जी ने आख्या पाछया तुहाडे चरणां ते जिहड़ा भी आके मत्था टेक लैंदा उहदा तन दा भी चोला रंगिया गया ते मन दा भी रंगिया गया नहीं गंगा अजे भी बड़ी भुख है मेरा चित करदा मैं हर वक्त साथ संगत दी धूड़ी विच बैठा रहा धन गुरु अर्जन देव पातशाह अजे दिन नहीं सी चढ़िया बड़ा प्रशादी देख कीती नाल जल ले लिया ते नाल पखा ले लिया बीबिया वल माता गंगा जी हो गए ते गुरसिखा वल गुरु अर्जन देव पातशाह हो गए ते ज्यों ज्यों माता गंगा जी पखा चलते ने ते बजुर्ग मावा कहंदियां बचिए वाहिगुरु तेरी आस पूरी करे ते एक इस गल दा नहीं पता दुनिया नूं दातां देण वाला दुनिया जिहदे कोल मंगदी है उह तुहाडी सेवा पै कर देना जी ते इधर बजुर्ग कहंदे गुरसिखा तू बड़ा चंगा है चंगा ते है ही सी ते जिहड़े नेड़े गुरसिख सन गुरु साहब दे ओ कह रहे ने गुरसिखा जदों अमृत वेला होवेगा गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे अगे जाके तेरी सिफारिश करांगे तैनू सारा कुछ देणगे ते धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे मेरी होर कोई सिफारिश ना करे मेरी सिर्फ एहो ही सिफारिश करे हो कि मैं सात संगत दी सेवा करदा रहां ते सेवक बनिया रहां।

जिस तुम आप कर रहे हैं। ते हुन तुसी दावा करके कह सकते हो जदों करानू जाओगे ए दावा करके कह सकते हो कि किसी ने बैकुंठ नहीं वेख्या असी बैकुंठ क्यों

माता गंगा जी अपने महलों में चले गए ते श्री गुरु अर्जन देव पातशाह ओही पुराना कंबल अपने पावन शरीर ते ओढ़िया होया ते जोड़ियां विच आके खलो गए। हजूर कहंदे गुरसिखो जाओ तुसी गुरु रामदास साहब दा दर्शन करो ते तुहाडे जोड़ियां दी राखी मैं करांगा। प्रेरणा ले लईए इस गल तों जे किसे गुरसिख दा जोड़ा सानूं चुकना वी पवे ते मन विच नफरत आ जांदी। हजूर जोड़ियां विच खड़े हैं रुमाल लेके एक एक जोड़े नूं साफ करी जांदे। संगतां अंदर गईयां बेबल हो गईयां। जिस गुरु नूं लभण वास्ते जिस गुरु दे अगे मत्था टेकणा ते सिंघासन ते विराजमान ने बाबा बुढ़ा जी तो पुछया कि बाबा बुढ़ा जी ने चारे पासे तके नजर पई नेत्रां चो जल आ गया। आख्या ओ गुरसिखो जिस ते चरण परसन वास्ते आए हो उते तुहाडे जोड़ियां च खड़ा है। आके बाबा बुढ़ा जी ने पूछया पातशाह जोड़िया विच की कर रहे हो। संगतां दर्शन करने वास्ते आई हैं जोड़िया च की लभ रहे हो। एक एक जोड़े नूं पातशाह वेख रहे कहंदे ने बाबा बुढ़ा जी थोड़ी देर होर ठहर जाओ मैं एक एक जोड़े नूं चुक के तां वेख रहा मैनूं किते गुरु नानक दा जोड़ा लभ जाए। मैं सुनिया कि जदों सात संगत कट्ठी होके टुर पवे विच गुरु नानक भी टुर पैंदा है। मैं सुनिया कि सात संगत आई है ते उत्थे भी मैं इन्हां दी सेवा करन वास्ते तां गया सी कि किते सेवा करदियां करदियां किते गुरु नानक दे चरण भी मेरे हथ आ जा। मैं गुरु नानक दा जोड़ा ढूंढ लवां। हजूर दे नेत्रां च वैराग आ गए। अक्षय बाबा बुढ़ा जी सात संगत नूं कह दे थोड़ी देर होर रुक जा मैनूं इस रस तों ना तोड़न गुरु नानक दा जोड़ा लभ जाए ते मैं अपने आप ही हरिमंदर साहिब पहुंच जावांगा। इतनी निमत्ता जे इतनी निम्रता सी ते तवियां ते बह के भी क्रोध नहीं आया। जे इतनी निम्रता सी ताइयों ते पट्टा ने कह दिता कि धरण गगन नवखंड में जोत स्वरूपी रहो भर भन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन।

पर जदू ए नाव दे कोल पहुंची बेड़ी दे कोल ता मन विच सोचदी है कि मंदिर दा पुजारी कह रहा सी जेड़ा इंसान राम राम कहंदा है ओ ते संसार सागर तू पार हो जांदा ए ता छोटी जी नदी है जे संसार सागर आदमी राम राम कह के पार हो सकदा है ते मैं राम राम कह के ए नदी क्यों नहीं पार कर सकदी मन विच भरोसा राम ते बज गए राम राम करदी ए नदी दे विच वड़ी ते देखदियां देखदियां तुरदी तुरदी नदी दे अध विचकार चली गई पानी दे उस पानी दे उत्ते इस तरह तुरी जांदी है जिवें के लोक धरती ते तुरदे ने और देखदियां देखदियां राम राम कहंदे आ ए नदी पार कर गई हुण जदों आंदी है तां वी राम राम कह के नदी दे उत्ते तुरदी आंदी है जदों वापस जांदी है उदों वी राम राम कहंदी नदी पार कर लैंदी एक दिन मन विच ख्याल आया मैं राम राम कह के नदी पार कर लैनी है पानी उत्ते इस तरह तुरनी है इस तरह तुरनी है पानी उत्ते जिवें लोग धरती ते तुरदे ए राह मैनूं मंदर दे पुजारी ने दस्या है ते क्यों ना उस पुजारी नूं घर बुला के उन्हूं रोटी खुआवां प्रशादा छकावां उहदी सेवा करां गुजरी तैयार होके घरों चल पई उसी तरह राम राम कहंदी नदी पार करके मंदिर जा पहुंची बड़े प्यार नाल कहा पुजारी नूं पंडित जी अज चलो मेरे नाल मेरे घर चल के रोटी खाओ प्रशादा छको पंडित जी तैयार हो पए अगे अगे गुजरी ते पिछे पिछे ए पंडित जी चल पए तुरदे तुरदे जदू नदी दे कोल आए पंडित जी कहन लगे उस गुजरी नूं के बेड़ी नाव ता दूसरे पासे है तू केड़े पासे आ गई है गुजरी कहन लगी पंडित जी बेड़ी दी नाव दी की लोड़ है जद राम राम कह के इंसान संसार सागर तू पार हो सकदा है ते फिर बेड़ी दी की लोड़ है ए नदी ता छोटी है राम राम कह के इथू भी पार हो जावां पंडित जी कहन लगे ए थोड़ी हो सकदा के राम राम कही जाइए ते नदी तू पार हो जा गुजरी कहन लगी तुसी मेरे पिछे पिछे आओ तुसी ते कदों दे राम राम कहंदे हो मैं ते हुणे कहन लगी आ ते नदी पार कर जानी आ ए कह के राम राम कर दी ए गुजरी नदी दे उते पानी दे उते तुरन लग पई ए देख के राम राम कहंदे पिछे पिछे पंडित जी भी तुर पए जदों थोड़ी दूर गए पानी डूंगा सी ते जाके गोते खान लग पए जदों डुबन लगे ते उस गुजरी नूं कहन लगे ए आप ते मरेगी नाल मैनू भी मारेगी ओ गुजरी ते राम राम कहंदी नदी पार हो गई ते पंडित जी डुबदे डुबदे मसां बचे ते बड़ी मुश्किल दे नाल किनारे ते आके लगे हुण सवाल ए पैदा हुंदा है राम राम ओ गुजरी भी करदी है ओ नदी पार कर गई राम राम ए पंडित भी करदा है पर ए डुबदा डुबदा बचिया
कारण की कारण ही हुई जो गुरु अमरदास पातशाह कहते ने कि राम राम के सारा संसार कहते पर सारे वो मिलता नहीं मिलता किनू जेड़ा पखंड ना करे बल्कि मनो राम राम।

उस पुजारी ने ते राम नू खड़ौणा ही समझे, क्योंकि राम नू मानव च नहीं वसाया। उस गुजरी ने राम नू राम समझिया, वो नदी भी तर गई ते संसार सागर तो भी तर गई। हुण कबीर साहब कहिंदे ने, मैं बौरा हो गया राम दे नाम दे नाल लग के। ओ बौरा नहीं जिन्हू लोग पत्थर मारदे ने,

लोग जेड़े ने ओ मेनू कहंदे ने कबीर बौरा है, कबीर बौरा है। क्यों? इस वास्ते कि ना पूजा करदा है ते ना

लोग कहते ने कबीर बौरा है, ये कबीर बौरा है, ये पागल हो गया। पर कबीर सब कहते मैनू कोई पागल कब, मैनू कोई बौराना कब, मैनू कोई फर्क नहीं, क्योंकि मेरे मन का दर्द मेरा प्यार मेरा आराम जानता है, मैनू दुनिया की परवाह नहीं।

मक्के गए। उथे काजिया ने सवाल किया, ए बाबा नानक ए दसो हिंदू वड्डा है के मुसलमान? उस रब की दरगाह दे विच मुसलमान नू जगह मिलेगी के हिंदू? गुरु नानक साहब उन्हां काजियां ने की कहंदे ने?

कसंबे दा रंग कच्चा हुंदा। कपड़े नूं रंग चाड़ो धोवो सारा रंग उतर जांदा। इसे तरह जेड़े लोग रब दे नाम ते लड़दे ने रब नूं वखरा वखरा करके समझदे ने समझो कि उन्हां उत्ते राम दा अल्लाह दा वाहिगुरू दा रंग चढ़िया।

रहत बिना न सिख कहावे। रहत बिना जिड़ा ना बाणी पड़ी ना अमृत धारी ना रहत च पूरा साहब जी कहंदे ने सिख किवें हो सकदे। ते रहत तो बिना ओ चोटा खावेगा दुखी होवेगा।

0: जे दूजे पासों मंगी है जे दूजे पासों मंगी है ता दाज मराई है मोह दूजी नाही था
1: उदनू चोट जाइए प्रभु।